98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

आपके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, उसकी शादी में सिर्फ एक महीना बचा है एंड यू रियलाइज कि अरे ये तो मेरा सच्चा प्यार है, एंड देन यू डिसाइड कि एक महीना बचा है, दैट्स 30 डेज, आई कैन स्टिल ट्राई एंड विन हिम बैक. क्या आप ऐसा करोगे, हाँ या ना? मेरी बेस्टी की एक कजन है एंड शी काइंड ऑफ मतलब ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड, वेंट टू अमेरिका. अब वो वापस आई है काम नाम छोड़ के, डिसाइडेड टू लाइक सेटल डाउन इन इंडिया. और उसने रियलाइज किया कि आई जेन्युइनली स्टिल हैव द हॉट्स फॉर माय एक्स बॉयफ्रेंड और मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ. एक्सेप्ट टाइनी लिटिल प्रॉब्लम, उसकी शादी हो रही है एक महीने में, बट इंस्टेड ऑफ बैकिंग ऑफ शी इज सेइंग कि क्या फर्क पड़ता है, मैं इन 30 डेज में उसका दिल टर्न अराउंड ऐसा करूंगी दैट ही विल वांट टू बी विद मी. नाउ आई डोंट नो इफ एथिकली, मॉरली, रोमांटिकली ये सही चीज है टू डू और नॉट. And because I'm confused about it, I thought I will ask you, कि आपको लगता है कि what she's trying to do, basically win her ex-boyfriend back in 30 days, is that a right thing or a wrong thing or a maybe thing, या फिर प्यार में आदमी पागल हो जाता है, I don't know, whatever your answer to that is, hit me up on the gram या Facebook and tell me what you think about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E, so go ahead and do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, It's hot. Radio Mirchi. Radio Mirchi. It's hot. Mirchi. Mirchi. It's hot.

Avicii. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना किसी हीरो के बारे में, ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। दिस सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।
2: हो चुप कर, लंघ जावे कोल दी तू, संघ जावे को तकनी च तेरे, रंग विच रंग जावे

0: लाल लाल कलर की बांगड़ी वांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स वन ऑफ दोज कोलैब्स जो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया, एंड नाउ जब आप ये गाना सुन चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन जस्ट मेक्स सेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जसलीन रॉयल एंड बादशाह, उनका नया नवेला गाना इनाम। काउंटडाउन का अगले वाला गाना है, बट बिफोर वी प्ले द सॉन्ग आई हैव टू टॉक अबाउट जसलीन रॉयल। वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो शी इज बीन गिविंग अस बैक टू बैक वायरल हिट्स लाइक हीरिए। ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाए है उनमें उसके साथ। देन ऑल्सो साहिबा विद स्टेबिन। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैव हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है, आई लव द कंपोजर दैट शी इज। आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई है आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाई जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेर शाह का रांझा जो बीप्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: ऐश किंग की आवाज गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने ऐश किंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो की एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बतला।
0: गली बॉय के साउंडट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, कॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। This song was a phenomena. एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं। इसीलिए हीरिये मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरिये मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरिये, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, एक गाने का नाम है हीरिये। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कॉज। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बारे गाने की बारी। आदित्य रिखारी रावटोर कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: जाए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर। छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: कभी।
1: And the song we're going to feature this week is
2: आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
1: गाने का नाम है आँखों में तेरा ही चेहरा by the band Aryan। साल 1999 में ये गाना रिलीज हुआ। आवाज जय वालिया की है। इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था। कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का, तो आप बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने दिमाग में। जो स्टेजेस ऑफ लव होते हैं ना, उसमें इन्फैटुएशन सबसे प्यारा होता है। जब पेट में वो प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, जब दिमाग में हम सिर्फ उनसे मिलने के सपने देख रहे हैं या उनसे जब मिले थे उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली कैप्चर्स दैट कि आंखों में तेरा ही चेहरा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ब्रो। दिस इज द काइंड ऑफ लव जो हर लड़की चाहती है कि किसी लड़के को उससे हो जाए। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स टाइम टू फील दैट ओल्ड स्कूल लव। जय वालिया की आवाज में आर्यन द बैंड का गाना दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक। This week, you're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा. यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है. एट आरजे करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज. आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं. जल्दी जल्दी बताओ दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था. एट आरजे कनेक और इंस्टाग्राम पर आके बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी. गाने का नाम है अर्ज किया है. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स. अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। करेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक री एंट्री हुई है जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम ऑन गाना नंबर 8। एश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी। लविंग दिस सॉन्ग अनीश सरकार, हृदय का गाना उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। द दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक शफल हुआ है, एक गाना ऊपर एक गाना नीचे। मिट्टर और की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक बार फिर से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके बंजारे का गाना बैरन, दिस हरियाणवी सेंसेशन ऑफ अ सॉन्ग, 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, शीशा ऑन नंबर 2 एंड बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉप 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, यार इस फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20।

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा VFX ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, YRF Spy Universe, जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा Spy Universe अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ, दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़े मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल हो ना हो, मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997, एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

0: एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तन्हा आवाज होती है।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है, हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

कदर नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। कैन यू बिलीव इट That war in 2019 was his last big blockbuster, and maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, दे हैव सम मेजर एक्टिंग चॉप्स, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची डॉट 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Are Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi.

0: Mirchi. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: Just bounce.

0: चाहिए।
1: अगर आज अलार्म तुमसे ज्यादा मोटिवेटेड साउंड कर रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली एडल्ट बन चुके हो। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हो रहा है, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारी होस्ट, तुम्हारी दोस्त ऑन द ईस्ट कोस्ट। ऑफ कोर्स मिर्चे मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। और चाय गर्म है, कॉफी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, और एक चीज पक्की है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट से ज्यादा क्रिस्पी ये शो होने वाला है। वेलकम टू मिर्चे मॉर्निंग्स, जहाँ पर ट्रैफिक भी थोड़ा सा बेरेबल लगता है। इनबॉक्स के अनरेड ईमेल्स के साथ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी घर की याद आने वाली है। फिर साथ साथ में बॉलीवुड की मस्ती और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन बनाएंगे सुपर मिर्चीदार। फिलहाल तुम कुछ भी कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, घर पर से वर्क फ्रॉम होम की तैयारी शुरू कर रहे हो, किचन में अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, या फिर बेड से अभी तक उठे ही नहीं हो, मुझे अपने साथ चिपकाए रखो क्योंकि अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारा दिन मिर्चीदार बनाने की फुल टू कोशिश करने वाली हूँ। ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अब आने वाले हैं बॉलीवुड बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग। तो चलो आज कैलेंडर को थोड़ा सा रिवर्स गियर में डालकर ले जाते हैं टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1933 में अमेरिकन पायलट वाइली पोस्ट दुनिया का पहला सोलो राउंड द वर्ल्ड फ्लाइट सिर्फ 7 दिन 18 घंटे और 49 मिनट्स में कम्प्लीट करके लौटे। उस जमाने में इतने टाइम में दुनिया घूम सकते थे। 1934 में नोटोरियस बैंक रॉबर जॉन डिलिंजर को शिकागो के बाहर FBI ने एनकाउंटर में मार गिराया। 1946 में जेरूसलम के किंग डेविड होटल पर एक बॉम्बिंग हुई जिसमें 91 लोगों की जान चली गई। और फिर 1947 में आज के दिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियल तिरंगा को बीच में अशोका चक्र के साथ नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया। एक फ्लैग है लेकिन उसमें करोड़ ऑफ लोगों की होप्स एंड ड्रीम्स एंड आइडेंटिटी समाई हुई है। 1992 में पाब्लो एस्कोबार अपनी ही बनाई हुई लग्जरी प्रिजन से एस्केप कर गया। और 2011 में नॉर्वे में एक एक्सट्रीमिस्ट ने हॉरिफिक टेरर अटैक्स किए जिसमें 77 लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर होती है टाइम ट्रैवलिंग खत्म। अब बारी है मिर्चीदार बैंगर्स की। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आज के एंटरटेनमेंट बज में कैटरीना कैफ सोशल मीडिया पर डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ हर पर्सनल लाइफ, बल्कि रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ फैंस उनसे यूथ लेट CJB प्रोटेस्ट को लेकर पब्लिक सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे। जब उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है तो एक इंस्टाग्राम फैन पेज जिसके 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उसने अकाउंट क्लोज कर दिया। उस पोस्ट में अपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस किया गया और कहा गया कि सेलिब्रिटीज शुड स्पीक अप ऑन इश्यूज दे केयर अबाउट। अब सोशल मीडिया जो है दो कैंप्स में डिवाइडेड है। एक साइड का कहना है कि पब्लिक फिगर्स शुड यूज द प्लेटफॉर्म टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, और दूसरी साइड का मानना है कि हर सेलिब्रिटी को हर टॉपिक पर पब्लिक कॉमेंट करना जरूरी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या टेक है इस पर? क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रहती है सेलिब्रिटी से, या यू आर ओके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस? लेट मी नो, DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची Chris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो वेदर का हाल चाल पता करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज, पिछले 24 घंटों में आसमान ने अपना फुल वाटर टैंक खोल दिया था। 62 मिलीमीटर्स की बरसात हुई है, लेकिन अगले 24 आवर्स में रेन का चांस ऑलमोस्ट वेकेशन मोड पर है। लेस देन 1 मिलीमीटर एक्सपेक्टेड है। सो अम्ब्रेलास को कंपल्सरी अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन कैरी करोगे साथ में तो इट्स मच बेटर। आज का टेम्परेचर रेंज है 72 डिग्री फारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन इट्स स्टिल फीलिंग 73 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। And it's because of the humidity, sunshine and wind. देखो अभी से लेकर शाम को 4 बजे तक sunshine काफी attendance में है। अगर walk करने बाहर जाना चाहते हो, picnic मनाना चाहते हो, चाय का plan है porch पर बैठकर, तो ये तुम्हारी window है। 4 PM के बाद में clouds will enter in a very dramatic way. आज का temperature range है 70 से लेकर 86 degrees Fahrenheit तक, almost कल के जैसा ही है। तो wardrobe में कोई खास फर्क है नहीं, layer के player बनकर जाओ। बाहर जा रहे हो तो SPF 50++++ लगा कर ही जाना। एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एट लीस्ट हैव 3 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड मिर्ची को लगाए रखो अपने साथ, मैं हूँ प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और ऑनलाइन भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3, यानी कि 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लाइंड एन अर्जेंट हियरिंग ऑन अ पिटिशन रिलेटेड टू दिल्ली पुलिस एक्शन ड्यूरिंग अ सीजेपी पार्लियामेंट मार्च। ड्यूरिंग द मेंशन, द चीफ जस्टिस सेड, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड द मैटर वॉजंट टेकन अप अर्जेंटली। द लीगल प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू इट्स नॉर्मल कोर्स। एंड नंबर 2 पर, आफ्टर द हियरिंग, सीजेपी फाउंडर अभिजीत डिपके रिएक्टेड ऑन एक्स विद अ क्रिप्टिक पोस्ट मेड अप ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। एंड फाइनली नंबर 3 पर, टेक की दुनिया से इलॉन मस्क का कहना है कि ग्रॉक इमेज इज एमिंग टू क्रिएट अ फुल लेंथ वर्जन ऑफ द ओडिसी बाय द एंड ऑफ द ईयर, स्टेइंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू होमर्स ओरिजिनल वर्क। एआई मूवीज लगता है डायरेक्टर्स की भी जॉब खतरे में है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Is that so?

0: देखो, अगर तुम या तुम्हारे बच्चे सोचते हैं कि ई बाइक उठाओ और निकल जाओ, तो एक मिनट ये सुनकर जाना।
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
0: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर तुम न्यू जर्सी में ई बाइक चलाते हो तो ये अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट का एक नया ई बाइक लॉ अब फुली एनफोर्स होना शुरू हो चुका है। अब रूल्स डिपेंड करते हैं तुम्हारी ई बाइक की टाइप पर। तो अगर तुम्हारी बाइक जो है वो पेडल असिस्ट है और 20 माइल्स पर आवर तक जाती है तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और अगर तुम्हारी ई बाइक जो है वो थ्रॉटल असिस्ट है या फिर 28 माइल्स पर आवर तक जा सकती है तो गेम थोड़ा सा सीरियस हो चुका है। तुम्हें लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लायबिलिटी इंश्योरेंस तीनों चाहिए होगा। और साथ साथ में हेलमेट इज नाउ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, चाहे तुम 16 साल के हो या 60 इयर्स के हो। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो अप टू $50 का फाइन लग सकता है और ई बाइक इम्पाउंड भी की जा सकती है। इसीलिए आज ऑफिस जाने से पहले वॉलेट, फोन और साथ साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेना। वैसे न्यू जर्सी इज अमंग द फर्स्ट स्टेट्स टू रिक्वायर ऑटो स्टाइल लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर सर्टेन e-bikes. So, अगर तुम e-bikes regularly ride करते हो या anyone you know regularly uses e-bikes, तो उनको बोलना और खुद भी ये चेक कर लेना that you're covered. And I've got you covered music-wise. आने वाले हैं मिर्चीदार bangers only on मिर्ची mornings. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

सबसे पहले तो 22 जुलाई के बच्चों को हैप्पी हैप्पी बर्थडे है यार। जितने भी लोग अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करें उनको एक जादू की जप्पी और पप्पी फ्री में। चाहे तुम फिलहाल किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो खुद को ट्रीट देना बनता है। और साथ में बनता है वो लिस्ट के बारे में बताना जिसमें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आज तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज अपना बर्थडे शेयर करते हैं। सबसे पहले वी गॉट द हॉलीवुड स्वीट हार्ट सेलेना गोमेज एंड साथ में है एक्टर विलियम डेफो हु इज एन अमेजिंग एक्टर। काफी सारे फिल्म्स में इन्हें विलन के रोल में तुमने देखा होगा। एंड देन वी गॉट कॉमेडी किंग डेविड स्पेड। ऑल्सो वी गॉट एक्टर जॉन लेग्विजामो और लेजेंडरी म्यूजिशियन जॉर्ज क्लिंटन। ये सब भी आज अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। और इंडिया की बात अगर करें तो द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर लेट मुकेश जी, इनका आज हैप्पी बर्थडे है। इनकी आवाज आज भी बहुत सारे दिलों को बहुत ज्यादा टच करती है। तमिल सिनेमा के कॉमेडी सुपरस्टार योगी बाबू, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड लेट एक्टर मुकुल देव की भी आज बर्थ एनिवर्सरी है। साथ में वी गॉट मनीष राय सिंघन एंड एक्टर अहम शर्मा। एंड आज बर्थ एनिवर्सरीज भी है लेट पॉलिटिशियंस अजीत पवार एंड अनंत कुमार की। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, चांसेस है कि तुम टैलेंट, एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा स्टारडम लेकर ही आए हो इस धरती पर, उसका फुल यूज करो। आज अपने आप को ट्रीट करो। और मेरी तरफ से ये विश है तुम्हारे लिए कि इस साल तुम्हारी लाइफ का प्लेलिस्ट जो है ना वो सिर्फ हिट गानों से भरा हो और बफरिंग कम हो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस की, लेकिन फुल वॉल्यूम पर ढेर सारी मस्ती और मिर्ची बनी रहे तुम्हारी लाइफ में। अभी मिर्चीदार बैंगर्स में तुम्हारे लिए चलाने वाली हूँ। तुम मुझे अपनी सेल्फीज भेज सकते हो, अपने बर्थडे शाउटआउट्स भेज सकते हो, अपने केक के पिक्चर्स भेज सकते हो और अगर मन करे तो मुझे इनवाइट भी कर सकते हो अपनी बर्थडे पार्टी पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग।
2: गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,125 $4,125 पर ट्राई अंस के साथ आज गोल्ड के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें जहां पे

0: भी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे और 9 किश्तों में पैसे दे सकते हैं। आइए राज जूल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट तुमने सुना मेरे यानी कि प्रिसला के साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है मिर्ची आवक एट 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने डिटेंशन के बाद एक वीडियो शेयर किया है जहां वो एक ही शू पहनकर नजर आए हैं। वीडियो में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर अपॉलोजी की डिमांड की है और एग्जामिनेशन और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स जल्दी शुरू करने की बात की है। कुछ घंटों बाद उन्हें और दूसरे डिटेनीज को रिलीज कर दिया गया। ही वॉज डिटेन्ड यस्टरडे अलॉन्ग विद प्रियंका गांधी एंड अखिलेश यादव व्हाइल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द पीएम हाउस। नंबर टू पर इसके जवाब में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट की क्रिटिसिज्म की है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल्स नहीं बनाना चाहिए और गवर्नमेंट जेन्युइन स्टूडेंट कंसर्न्स और नीड से जुड़े इश्यूज पर पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए कमिटेड है। दोनों तरफ अपनी अपनी बात रखी जा रही है और डिवेलपमेंट्स पर सबकी नजर बनी हुई है। एंड नंबर थ्री पर इंडियन ओरिजिन रहमत पाशा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच अटैक के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना करीब 20 लोगों की जान बचाई थी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई है और जिस कैप को पहनकर उन्होंने रेस्क्यू किया था वो अब सिडनी म्यूजियम में डिस्प्ले की जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवक एट 3। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू राशि जोन. चलो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में क्या लिखा है.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, आज किसी अपने की हेल्प जरूर करो, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को साइड पर मत रखो. तुम्हारे आइडियाज जो है ना, वो तुम्हारा सुपर पावर है. आज तुम्हारा लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, फन तो कंटिन्यू होता रहेगा बॉस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीन पर मत छोड़ दो. बैलेंस इज द रियल फ्लेक्स ऑफ लाइफ. आज तुम्हारा लकी कलर इज रस्ट कलर, लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी मिथुन राशि, जो सबसे लाउड बोलता है जरूरी नहीं कि वो सबसे स्मार्ट बोलता हो. ट्रस्ट योर ओन ब्रेन टुडे. लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज 9. कैंसर यानी कर्क राशि, फैक्ट्स पे फोकस करो बेबी, फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील मत बना दो, स्पेशली मनी और वर्क के मैटर्स में. लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 31. लियो यानी कि सिंह राशि, हैप्पी लियो सीजन, स्पॉटलाइट ऑफिशियली तुम्हारे ऊपर आ चुकी है. कॉन्फिडेंस फुल चार्ज पर रखो, बस ओवर एक्टिंग सिर्फ बॉलीवुड के लिए छोड़ दो. लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, कंफ्यूजन टेम्पररी है, अगले कुछ दिन आंसर्स खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे. रिलैक्स करो, गूगल मैप्स की तरह लाइफ भी रीराउट कर रही है. लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 14. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अगर आज के राशि जोन से तुमने रिलेट किया है तो मुझे डेफिनेटली बताना. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. फिलहाल के लिए चिपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला। तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग। सो चलो जल्दी से देखते हैं बाकी की बची 6 राशियों का आज रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, ओवरथिंकिंग को आज अनपेड लीव पर भेज दो। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। गुड वाइब्स आर कंटेजियस। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड। लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर मोड ऑन करो। छोटी छोटी इरिटेशंस को म्यूट करो यार। फ्यूचर पर जूम इन बनाए रखो। लकी कलर फॉर यू इज कोरल। लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एडवेंचर का मूड है अमेजिंग। बस टीम वर्क को मत भूलना। सोलो हीरो से ज्यादा मजा आता है एंसेंबल कास्ट में, समझे। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 35। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मनी मैटर्स को आज थोड़ा सीरियसली देखो। स्मार्ट डिसीजन सिर्फ वॉलेट ही नहीं रिलेशनशिप्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे। लकी नंबर इज 12। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना। कभी कभी अच्छा वाला मोमेंट जो है ना लाइफ का बेस्ट अपडेट होता है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन। लकी नंबर इज 27। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज यानी कि मेन राशि, वर्ल्ड फास्ट चेंज हो रहा है। नए स्किल्स से दोस्ती करो और साथ साथ में अपने आप को अपडेट करो। दैट्स योर रियल ग्लो अप। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा टील। लकी नंबर इज 6। एंड देयर यू हैव इट। मेरा नाम है प्रिसला एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 2। अगर स्टार्स ने आज तुम्हें स्माइल कराया है तो मुझे बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड and stay hot.

0: और इसी के साथ मेरा शो रैप करने का टाइम आ चुका है. मैं हूँ प्रिसला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज का लास्ट मिर्ची तो तुम्हें खिलाकर जाऊंगी. चाइना का फास्ट टेलीस्कोप, जिसे प्यार से स्काई आई भी कहते हैं, इसने 1000 से ज्यादा पल्सर्स डिस्कवर करके ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया है. अब अगर सोच रहे हो पल्सर्स होते क्या है, तो सिंपल वर्जन ये है कि ये एक सुपर डेंस सुपर फास्ट स्पिनिंग स्टार होता है जो रेगुलर रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है, जैसे यूनिवर्स का अपना जीपीएस बीकन हो. साइंटिस्ट का कहना है कि ये डिस्कवरीज जो है हमें स्टार्स कैसे इवॉल्व करते हैं मिल्की वे को और अच्छे से समझने में और फ्यूचर के डीप स्पेस नेविगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. सो इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है. और अब एक छोटा सा काम मैं करती हूँ, तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हें मुझे फॉलो करना है. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. अभी मेरे जाने का टाइम है, टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, मजा.

0: अ किड हमारी ट्रेनिंग में ये भी आता था कि घड़ी देखकर बताओ क्या वक्त हुआ है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। यार वाकई में हमें एनालॉग क्लॉक्स एंड वॉचेस पढ़ना सिखाया गया था कि वक्त बताओ इसमें कैसे पता लगेगा तुम्हें। रोमन नंबर्स की काउंटिंग सिखाई गई थी ताकि तुम घड़ी देखकर टाइम बता पाओ कि कितना बचा है। हम वो जनरेशन है जिनको ये पता है कि पौने एक, पौने दो, पौने तीन, पौने चार का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर हम आज वही जनरेशन हो गए जो फोन में देखकर वक्त बता देते हैं क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है यार इसके ऊपर कि कितने बजे हैं। मैंने ये देखा है कि घड़ियां पहनना बहुत कम कर दिया है यार लोगों ने। या स्मार्ट वॉचेस देखते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेप्स काउंट करने के लिए, वक्त देखने के लिए तो आज भी फोन ही उठाते हैं। लेकिन आई टेल यू, आई एम अमंगस्ट वन ऑफ दोज पीपल ओल्ड स्कूल कि मैं घड़ी देखती हूँ यार वक्त देखने के लिए। मुझे बड़ा मजा आता है यार घड़ी पहनना, और वो भी ओल्ड स्कूल नॉट स्मार्टफोन वाली। एनालॉग वॉचेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जस्ट इन केस अगर कोई सुन रहा हो और गिफ्ट विफ्ट करना हो तो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन जो मैंने हल्के से खिसका दिया। बट लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। आप आज भी फोन से टाइम देखना पसंद करते हो या घड़ी से टाइम देखना पसंद करते हो? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल देती हूँ। आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऊपर वाले की कृपा रही है बॉस कि आज तक हमने कौवा बिरयानी खाई तो नहीं, लेकिन कौवा बिरयानी सुनी जरूर है। और जहां कहीं कौवा बिरयानी लफ्ज आता है तो हमें याद आ जाती है द फिल्म रन।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And actually, मुझे ऐसा लगा था कि यार कहीं ऐसा ना हो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी कि यार नाम भी रन है और काम भी रन हो जाए, कि ऑडियंस जो है वो रन करती हुई नजर आ रही है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट भी नहीं हुई, लेकिन फिल्म ने मजा जरूर दिलाया जिसने इस फिल्म को अपना वक्त दिया था। एंड वेल, दिस फिल्म वॉज एक्चुअली अ रीमेक बट विद अ ट्विस्ट। इट वॉज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म जिसका नाम था जीवा, एंड द डायरेक्टर वॉज द सेम, जिन्होंने जीवा बनाई थी उन्होंने ही रन बनाई थी। लेकिन हिंदी वाली रन के अंदर उन्होंने थोड़े से ट्विस्ट किए और जो कॉमिक एलिमेंट्स थे ना वो ज्यादा डाले, ताकि ये जो फिल्म है ये बॉलीवुड ऑडियंस को अच्छी तरीके से सूट कर पाए। स्पेशली विजय राज का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था इस फिल्म के अंदर, जो कि ओरिजिनल तमिल वर्जन जीवा के अंदर नहीं था। एंड दिस डिसीजन वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बिकॉज ऑफ द रीजन की इस फिल्म को आज भी हम कौवा बिरयानी एंड विजय राज की वजह से बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं बॉस। बट लेट मी टेल यू अबाउट द एक्शन सीन्स ऑफ दिस फिल्म। वेल, फर्स्ट हाफ के अंदर जो एक्शन सीन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे ओल्ड दिल्ली के रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे, जिससे कि मूवी को भी काफी अच्छा खासा ऑथेंटिक लुक मिल रहा है। स्पेशली वो जो रूफटॉप से कूदने फांदने वाले सीन्स हैं और गलियों में से भागने वाले सीन्स हैं, वो सारे के सारे सेट्स में से नहीं लेकिन पुरानी दिल्ली के रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। एंड रूफटॉप के सीन का जिक्र एक्चुअली रिमाइंड्स मी कि यार ये रूफटॉप जो है ना, इट कुड हैव लैंडेड अभिषेक बच्चन इनटू अ हॉस्पिटल। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जान बची तो लाखों पाए, और जब रन मूवी की शूट चल रही थी ना, तो लौट के अभिषेक घर को आए।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara. And while the film was being shot, at that time, Abhishek Bachchan ko ek gehri chot lagte lagte bach gayi thi. There was this chase scene, aur us chase scene ke andar unko rooftop ke beech mein jump marna tha. Matlab socho, ye khud hi kar rahe the, stuntman nahi tha iske andar. And well, jab itni lambi lambi taange hain kisi ki, to yaar jump marna itna mushkil bhi nahi hoga. Lekin, mushkil wahan tab padi jab unhone apne is jump ko miscalculate kar liya. But baal baal bach gaye, जब वो गिरे और फौरन से उन्होंने उस रेलिंग को पकड़ लिया। अगर ना पकड़ा होता तो वो सीधे नीचे जाते और उनको गहरी चोट लग सकती थी। सो लकीली ही एस्केप्ड विद माइनर ब्रूजेस, लेकिन मेजर इंजरी नहीं आई उनको। यहाँ अभिषेक बच्चन के एक्शन के अंदर स्पॉन्टेनिटी थी, और वहाँ विजयराज की कॉमेडी के अंदर स्पॉन्टेनिटी थी। हमने विजयराज की लाइनें इतनी दिल से रटी हुई हैं, जिसमें से कौवा बिरयानी वाला सीन जो है वो तो हमें पूरा का पूरा रटा रटाया हुआ है बॉस। लेकिन क्या आपको पता है कि विजयराज ने अपनी काफी सारी लाइनों को ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया है, और ये कौवा बिरयानी वाला जो सीन था ना, ये एक्चुअली पार्शली अनस्क्रिप्टेड था। लेकिन जब विजयराज ने इस पर इम्प्रोवाइज किया ना, तो क्रू भी हंसने से नहीं बचा बॉस। उन लोगों के भी हंसी के ठहाके छूट गए जब ये शूट चल रहा था। तो एंड ऑफ कोर्स जब हम स्क्रीन पे देख देखते पगला रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड तो क्या ही हाल हुआ होगा यार लोगों का। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद, देयर वाज दिस वन थिंग जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बिहाइंड द सीन्स देयर वाज दिस बजट कंस्ट्रेंट, जिसकी वजह से द फिल्म वाज एक्चुअली मेड ऑन अ वेरी लो बजट। और यही वजह है कि इस फिल्म को रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है, नेचुरल लाइटिंग में शूट किया गया है। आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर सीन्स जो है वो दिन के ही हैं, ताकि लाइट का पैसा बच पाए। लेकिन क्योंकि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव मूवी बनाई और काफी डिसेंट मूवी बना दी थी, तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की काफी तारीफ भी की गई थी। हालांकि फिल्म थिएटर्स में इतनी नहीं चली, लेकिन यार हमारे लिए ये फिल्म टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, हर कहीं कल्ट फिल्म बन गई है कि आज भी हम इस फिल्म को निकाल निकाल के देख ही लेते हैं कभी ना कभी, कि यार आज वो वाली फिल्म देखते हैं, या फिर इस फिल्म के वो वाला सीन जो है ना वो देख यार मजा आ जाता है। अक्सर जब दोस्तों की बैठक लगती है ना, तो ये सीन तो हमारे जिक्र में होते ही होते हैं यार। सो बेसिकली ये फिल्म इतनी सही तो बन गई कि पब्लिक इस फिल्म से नहीं रन कर रही है, बल्कि आज तक भी इस फिल्म की तरफ रन कर रही है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल स्ट्रेस इतना है कि बालों ही बालों का गुच्छा नजर आता है, बट वो स्ट्रेस फ्री टाइम भी था जब कहानियों का गुच्छा आया करता था।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और संडे की सुबह ब्रंच टाइम पर टाइम हुआ करता था

कहानियों के गुच्छे का। आज उस टाइम के बारे में सोचो ना तो अनरियल लगता है कि ये टाइम भी हमने जिया था, जब एक कहानी के गुच्छे का इंतजार करते करते संडे की आधी सुबह गुजर जाया करती थी, क्योंकि ये शो ना थोड़ा लेट आया करता था, बिल्कुल संडे मूड में। बट डू यू नो, इस शो के गाने को भी फेमस डुओ गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज ने ही बनाया है। लिखा गुलजार साहब ने और म्यूजिक कॉम्पोजिशन विशाल भारद्वाज का है। ये तब की बात है जब विशाल सिर्फ गाने कंपोज किया करते थे। और कहानियों के गुच्छे के बारे में सोचने के बाद ना, अब मेरा मन आज की मेरी जो टू डू लिस्ट है ना, उसमें तो नहीं लगने वाला यार। आपका भी नहीं लगेगा ना? तो रहने देते हैं ना यार, आज में वापस आने में अभी टाइम है, तब तक हम 90s में ही रहते हैं ना। मेरे यानी सारा के साथ ऑन मिडडे मोहब्बत, तो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी का एक और कमाल। स्टे ट्यून्ड।

0: अंदाज हमी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम हिज एल्बम तेरा चेहरा। और याद है आपको वो टाइम जब ये एल्बम रिलीज हुआ था और सबके सब जो है ना वो दीवाने हुए चले जा रहे थे इस एल्बम को लेकर कि अरे यार क्या म्यूजिक निकला है। और एक्चुअली यहाँ बहुत प्यारा म्यूजिक बनाया था और जो पिक्चराइजेशन था दैट वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड बहुत बहुत हवा थी यार इस एल्बम की। एंड क्लियरली अदनान सामी वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर द रीजन की अरे एक ऐसा बंदा आया है जो लंडन से है और उसके रूट्स जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री के हैं और दिखता बड़ा क्यूट है लेकिन गाता बड़ा सही है। अदनान सामी खुद अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको पीआर की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही अपना पीआर थे, चलते फिरते
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो जी अब हम भी चलते फिरते आगे बढ़ते हैं और लेकर आते हैं मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं आपको सुना देती हूँ और आपको बताना होता है कि ये दो गाने आखिर कौन से हैं। तो जी बस आज का जो मिक्स है वो कुछ ऐसा है, सुनिए जरा और बताइए मुझे।

बस जी, अब मुझे डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दीजिए कि ये दोनों गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: त्रिदेव का ये गाना

जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जो कैमरेडरी है ना, ये बहुत साल पुरानी है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने एक दूसरे के साथ 90s में तो काम किया, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब 9 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। And finally, they worked together in the film Tashan। और वहाँ इनकी दोस्ती जो है वो पुरानी वाली दोस्ती नजर आती है अगर बिहाइंड द कैमरा वाले सीन्स देखे जाए तो। वेल, टशन एक ऐसी मूवी थी जो कि पोल्स के अकॉर्डिंग वाज मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2008, लेकिन इसी के साथ साथ इट आल्सो बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ 2008। और सीन ऐसा था कि करीना कपूर जो थी वो उस वक्त जब वी मेट और टशन दोनों ही फिल्मों पर साइमल्टेनियसली काम कर रही थी, लेकिन करीना कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि जब वी मेट जो है वो टशन से बड़ी हिट हो जाएगी। इनफैक्ट इन हर हेड शी वॉज थिंकिंग कि जब वी मेट तो ठीक है यार, मैं कर रही हूँ, इट्स ओके, चली तो चली, ना चली तो ना चली। उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी उस फिल्म से, लेकिन टशन से डेफिनेटली थी, बिकॉज देयर वॉज सैफ अली खान, देयर वॉज एन अक्षय कुमार, एंड ऑल्सो दिस वॉज अ यशराज बैनर फिल्म, तो उनको ये लग रहा था कि टशन पे फुल फोकस करना है। तभी तो उन्होंने जीरो फिगर भी बनाया, इतनी मेहनत करी, लेकिन इवेंचुअली दिस फिल्म फ्लॉप्ड। And ironically, जब वी मेट बिकेम अ वेरी बिग हिट। In fact, करीना ने इस फिल्म पर इतनी मेहनत करी जीरो फिगर बनाने के लिए कि शूट के दौरान there was this one time जब वो बेहोश भी हो गई थी। और फिर जब मूवी रिलीज हुई तो उसके बाद फिल्म मेकर्स के बेहोश होने की बारी आ गई। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The movie Tashan was actually Patodi's ki family film. Kaise? Batati hu.
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड इस फिल्म में हमें तो पता ही कि सैफ अली खान और करीना कपूर तो थे ही. दो उस टाइम पर इन दोनों की शादी नहीं हुई थी और ये जो मोहब्बत का सिलसिला है सिर्फ शुरू ही हुआ था. लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके फैमिली बननी शुरू तो हो ही गई थी, ये कह सकते हैं. एंड इन फैक्ट इस फिल्म के अंदर सैफ अली खान के बेटे भी हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इब्राहिम खान, जिन्होंने सैफ अली खान के बचपन वाला जो रोल है वो प्ले किया है. अगर अब आप ये फिल्म वापस से देखते हो ना तो आपको याद आ ही जाएगा. And coming back to सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी, well, इसी मूवी के सेट्स पर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी. और एक किस्सा भी है इनकी लव स्टोरी का, जहाँ पर अक्षय कुमार सैफ अली खान को भाईचारे में एक बात समझा रहे थे कि यार भाई देख, तुझे पता है ना कि तू क्या कर रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स सेट पे सबको पता था कि सैफ अली खान एंड करीना कपूर आर इन्वॉल्व्ड. और उन्होंने सैफ अली खान को साइड में ले जाकर ये बात बताकर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश की कि भैया टाइम पास वाइम पास तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इन दोनों बहनों को यानी कि कपूर सिस्टर्स को लाइटली मत लेना. क्योंकि अक्षय कुमार को लगा था कि सैफ अली खान इज जस्ट प्रोबेबली डूइंग सम टाइम पास. लेकिन सैफ अली खान एट दैट टाइम प्रोबेबली वाज वेरी क्लियर इन हिज हेड, बिकॉज उन्होंने अक्षय को यही कहा कि मुझे पता है भाई मैं किस तरफ और किस डायरेक्शन में हेड कर रहा हूँ. और वो डायरेक्शन आज तो हमें पता ही है, तैमूर और जय के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हरिहरन एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बॉम्बे फिल्म से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट
1: तू ही रे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक यार, जिसकी ऑफ कोर्स कंपोजिशन इज बाय एआर रहमान साहब। और क्या कंपोजिशन दी है, मतलब इस गाने को जब मैं सुनती हूँ ना, आंखें बंद करके अगर आप इस गाने को सुनो तो आपको भी लगेगा कि आप समंदर के किनारे एक चट्टान के ऊपर खड़े हो और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि ये गाना जो है ये काफी दिल तोड़ने वाला गाना है, जहाँ पर दो लोग जो है वो बिछड़ गए हैं और एक दूसरे से मिलने की आह और चाह में इस गाने को लिखा गया है। मुझे ना ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ पर प्यार की जो इंतहा होती है जब वो क्रॉस कर जाती है ना, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा इंसान लफ्जों में, जो आम तौर पर आप और मुझ जैसे इंसान तो नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज वेयर क्लैशेस आते हैं। तो यस, ऐसे टाइम पे इन गानों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यार इस गाने के अंदर क्या लिखा हुआ है सुनो। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए ना चैन इन्हें, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन। और जहाँ पर लोग एक दूसरे से ना मिलने पर नाराज हो जाते हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने डेट प्लान नहीं करी, हम बाहर कब जाएंगे, हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, ये 90s का गाना पता है क्या कहता है कि 100 बार बुलाए मैं 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया, एक आंख रोई तो दूजी बोलो सोएगी कैसे भला। ओ हो, महबूब साहब ने भी ना हमारा दिल ले लिया वाकई में। तो चलो फिर, हम हेरा ही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून रहिएगा टू मिर्ची कॉज इट्स हॉट।

0: Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कभी कभी मेरे
2: मुकेश स्पेशल चारों के साथ बुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: पुराने गानों में सबसे मासूम सी आवाज पता है किनकी लगती है मुझे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये आवाज मुझे लगती है मुकेश साहब की। और मुकेश साहब कुछ 15-16 साल के रहे होंगे जब फिल्म इंडस्ट्री ने इनका टैलेंट पहचान लिया था। सुनिए एक मीडिया चैनल को दिए एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या स्टोरी शेयर की थी।
1: हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साहब गाना गा रहे थे और उसमें दो साहिबान फिल्म के आए हुए थे, तो शादी की बारात को एंटरटेन करने के लिए लड़की वाले भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है। हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई, गाना वाना गाएंगे। हमने गाना वाना गा दिया साहब। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आए, बस सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए, कहने लगे साहब आपके साहिबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये।
0: इसके आगे क्या हुआ आगे सुनेंगे ना, राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

0: मुकेश चंद माथुर यानी कि सिंगर मुकेश जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 15-16 साल के थे जब दिल्ली में अपनी बहन की शादी में गाने वाने गा रहे थे, तब दो फिल्मी लोगों ने इनको नोटिस किया। इन फिल्मी लोगों में से एक थे तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी। ये दो लोग इनके घर पहुंचे इनसे और इनके फादर से मिलने, तो फादर साहब ने बोला भाई कौन है ये लोग, क्यों आ गए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ शेयर किया था मुकेश जी ने एक मीडिया चैनल से एक बहुत पुराने इंटरव्यू में। तो सुनिए आगे की स्टोरी।
1: फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहले क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये। मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे। तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ये नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, तो किसी को जानते जमानते नहीं। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज़ पर समझ नहीं हुए, वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क व्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम था निर्दोष, दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया मेरे फादर को। मेरे फादर कह लगे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो।
0: और इसके बाद साहब बॉम्बे पहुंच गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
3: कभी कभी मेरे
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: The iconic singer Mukesh जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 16-17 साल के होंगे 1939-40 में जब बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि दिल्ली में एक शादी में इनके लुक्स और सिंगिंग टैलेंट को नोटिस किया था तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी ने। खैर ये बॉम्बे आए, एक फिल्म में काम भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में एक मीडिया चैनल से उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खैर साहब हम आए, पिक्चर हो गई फेल, हमें निकाल दिया गया, कंपनी भी बंद हो गई। पहले तो हमने कुछ दिनों कुछ कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारे दुनिया भर के धंधे करके। वो कहते हैं ना जी कि जब मुकद्दर में कुछ लिखवा के लाए हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा तरीका निकाल दिया कि प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और हमारी कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई वहाँ पे।
0: वेल, इनसे ये भी पूछा गया कि एक्टिंग में इन्होंने करियर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की।
1: मैंने कोशिश करी थी जी, मगर इतना नाकामयाब रहा। दो डिफरेंट आर्ट है और मैंने सोचा कि इट इज बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास सिंगर देन टू बी अ सेकंड क्लास एक्टर।
0: क्या ही लाइवली हंसमुख थे यार ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: सिंगर मुकेश का पहला गाना जो हिट हुआ था वो था 1945 की फिल्म पहली नजर का गाना, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना ऑलमोस्ट फिल्म से निकाला जाने वाला था। इसकी एक स्टोरी एक जाने माने मीडिया चैनल से बहुत पुराने इंटरव्यू में मुकेश जी ने शेयर की थी, सुनिए।
1: जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तय किया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए। तो हम मजहर खान साहब के पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कहने लगे, भाई बात ये है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के करेक्टर करते हैं, और इनके करेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजहर भाई कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना, और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज़ के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे, और अगर पब्लिक को गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकालेंगे।
0: वेल, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ में एक और उनका सुपरहिट गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: सिंगर मुकेश जी और उनकी वाइफ सरला की लव स्टोरी। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: मेरी माँ गुजरात की थी, गुजराती थी, श्रीमाली ब्राह्मण थी और पापा माथुर कायस्थ। उनकी पैदाइश दिल्ली की थी, माँ की बड़ौदा की थी, वडोदरा की थी। मिले दोनों बॉम्बे में। 1946 में उनका प्रेम विवाह हुआ और प्रेम विवाह ऐसा माँ के परिवार ने तो एकदम बिल्कुल ही नहीं स्वीकारा। एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाला, फिल्म में गाने वाला, सेटल नहीं हुआ है आदमी, हम ऐसे लड़के को अपनी बेटी दे ही नहीं सकते। मोतीलाल जी एक्टर जो थे, उन्होंने पापा की मदद की और पापा ने भागकर शादी की मेरी माँ से। कन्यादान मोतीलाल जी ने दिया, माँ के परिवार में से कोई मौजूद नहीं था, मगर पापा ने कभी उस बात की गिला या शिकवा नहीं रखा मन में। बहुत एक खूबसूरत प्रेम विवाह रहा उनका।
0: भाई ये तो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लव स्टोरी है। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो अक्सर मुकेश जी सरला जी के लिए गाते थे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

मिर्ची इट्स हॉट। मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी और राज कपूर जी की दोस्ती। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था, सुनिए।
1: बहुत ज्यादा आत्मीयता, एक दूसरे की कला के लिए इतनी इज्जत और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। राज अंकल ने पापा का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोनों की आवाज ऐसी मिलती थी, जब आपस में बात करते थे तो ये नहीं कह सकते थे कि ये राज अंकल बात कर रहे हैं या पापा बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज सुनी, कुछ अच्छी चीज की कल्पना की, सीधे मुकेश चंद के पास। और हमारा एक छोटा सा दो कमरे का घर था, उसमें एकदम बड़ी सी हवाई जहाज जैसी इम्पाला चली आती थी उनकी। सारे मोहल्ले में ये हो जाता था कि राज कपूर आए, राज कपूर आए। मगर उन्हें बिल्कुल भी सादगी से वो चले आते थे जमीन पे गद्दे आकर। मुकेश चंद, मुझे ये धुन ऐसी अच्छी लगी है, तो सबसे पहले वो दौड़े हुए पापा के पास आते।
0: वाओ, वेल नो डाउट जब मुकेश जी गए तो राज कपूर जी ने कहा कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
2: कभी कभी मेरे दिल
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के गाने सुनो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। बिल्कुल ऐसा ही शेयर किया था एक इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने, सुनिए।
1: वो इतने नरम दिल के इंसान थे, इतने भावुक थे, इतने कंपैशनेट थे। मैं कॉलेज में जब आया तो मैं देखता था कि मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां थी, तो मैंने एक दिन मेरी माँ से फरमाइश की, मुझे भी गाड़ी चाहिए। माँ ने पापा से कहा, सुनिए नितिन बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा है, उसको गाड़ी की जरूरत है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, करके गाड़ी की चाबी दी। और मैं बेफिक्री से और बेख्याली से कि गाड़ी तो एक ही है, मगर मैं काफी दिनों तक गाड़ी में घूमता रहा, दोस्तों को घुमाता रहा। एक दिन मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि बस स्टॉप पे पापा खड़े थे। उस दिन मैं वापस घर आया, माफ कीजिए मुझे, आज भी मैं वो बात याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मुझे हंसकर प्यार से बोले, पागल गाड़ी मैं चलाऊं या तू चलाए, एक ही बात है।
0: ओह दैट इज सो अडोरेबल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, लता जी, उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने क्या शेयर किया था।
1: मैं ताज्जुब करता था जब मुकेश जी फोन उठाकर रफी साहब को कहते, रफी मियाँ तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं ये गीत तुम्हारी तरह गा सकता, काश मुझे ऐसा गीत मिलता। रफी साहब का फोन आ रहा है, मन्ना दा का फोन आ रहा है, मुकेश तुमने कितना खूबसूरत ये गीत गाया है। आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत, ये भावना नहीं थी राइवलरी की, ये था कि देखो उसने इतना अच्छा गाया है, मैं क्यों ना उस जैसा गाऊं। मैं पापा के संग स्टेज पे गाता था तो हमेशा मुझे कहते थे, बेटा मेरे खुद के गीत गाने के लिए तो मैं खुद हूँ ही, तू रफी साहब के गाने गा, रफी साहब का ये गीत कितना खूबसूरत है, कितना लोकप्रिय है, तू किशोर दा का ये गाना गा। मुकेश जी रफी साहब को, किशोर दा को, महेंद्र कपूर साहब को, मन्ना दा को, और सबसे ज्यादा किसी को चाहते थे तो लता जी को।
0: वाओ, तो इसी जोड़ी का ये ब्यूटीफुल सुपरहिट गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: भाई अक्सर सिंगर से पूछा जाए कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुकेश जी ऐसा नहीं करते थे, वो बहुत क्लियर थे। एक बार उनसे एक पुराने इंटरव्यू में, एक मीडिया चैनल के एक इंटरव्यू में, उनसे जब कहा गया कि उनके पॉपुलर गानों में से उनका फेवरेट गाना सुनाए, तो सुनिए।
1: पॉपुलर तो नहीं जी, मैं आपको एक अच्छा गाना जो मुझे मेरे दिल को पसंद है वो मैं आपको सुनाया।

0: जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
1: और आपके लिए फिलहाल ये गाना जिसके लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म का नाम रजनीकांत था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची

0: वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स मुकेश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कई बार जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्या उनको ऐसा लग जाता है कि ये गाना अच्छा नहीं है या हिट नहीं होगा, क्या उनको ऐसी लिबर्टीज मिलती थी पहले के जमाने में कि वो गाने में कुछ चेंजेस फेर बदल कर पाएं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: फेर बदल तो हम नहीं कर पाते जी, क्योंकि वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है और उनकी बंदिश होती है, मगर हाँ कुछ थोड़ा सा एक इंट्यूशन जरूर हो जाती है कि ये गाना नहीं चलेगा।
0: और गाना पसंद नहीं होता था तो भी गा देते थे।
1: हाँ जी, पेट है।
0: इतने जोवियल लाइवली हसमुख मुकेश जी, इनको पर्सनली सैड सॉन्ग्स गाना पसंद था। सुनिए एक बार उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने।
0: वेल, यहाँ पे हम वो गाना सुन लेते हैं जो थोड़ा फिलोसॉफिकल थॉटफुल सा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: कभी कभी मेरे दिल
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मगर खैर कुछ सीरियस फिल्म मेकिंग अब शुरू हो गई है और लोग आते हैं, वो सिचुएशन भी बताते हैं, और जब सिचुएशन बताते हैं तो ज़रूर उसमें कलाकार उस सिचुएशन को सामने रख के उसमें खो के और उसके उसको गाने को उस किस्म से रेंडरिंग करता है।
1: वेल ऑनेस्ट, सीधे सादे, मासूम से मुकेश जी, बिल्कुल अपने गानों के जैसे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ ऑन मिर्ची सज्जन।

मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

सिंगर मुकेश जी की जब डेथ हुई 1976 में, तो वो यूएस गए हुए थे एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, उनका वन ऑफ द लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स उसके बोल क्या थे, वेल उनके एक और शो से, एक और प्रोग्राम से ये गाना जब वो लाइव गा रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं।

ब्यूटिफुल एंड गूज़बम्प्स। तो ये गाना सुन लेते हैं 1975 की धर्म करम मूवी का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशा है, और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मा युगम के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और अगर डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बाजी मारने की बात करें तो राजकुमार पेरियासमी को फिल्म अमरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं कमर्शियल सिनेमा भी पीछे नहीं रहा, पुष्पा 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। और जब टैलेंट को मिलता है नेशनल अवार्ड तो अप्लॉज सिर्फ थिएटर्स में नहीं, पूरे इंडिया में गूंजता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पाडुकोन लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही है अलॉन्ग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
4: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश अनजान है अब क्या करें।
1: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो, वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित सार्ड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट।
5: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी।
1: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: This is something special.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात कोर्सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।